0: 101.9.
1: ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲಕ್.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ऑलराइट दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब। और मैं हूँ आपका रेडियो मैन, और मेरे
1: एंड आई एम
0: साथ,
1: आरजे जागृति।
0: जी हाँ, तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ जागृति मंच बनाने वाले हैं। और इसका खास जो किरदार है वो ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं से म्यूज़िक अप्रिसिएशन आ जाए। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है सोमवार। आज सोमवार है, चूहे को बुखार है और चूहा गया डॉक्टर के पास। चूहे ने लगाई सुई और चूहा बोला उई उई उई। तो ये नर्सरी की राइम आपने सुनी होगी। इसका तात्पर्य ये है कि हम ज़्यादातर चाहते हैं कि जो मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ हैं वो उसको कम किया जाए, है ना? सो डू यू ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग दैट मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ आर रियल?
1: नो, नॉट एट ऑल।
0: नॉट एट ऑल, बिकॉज हैविंग यू नो ऑलमोस्ट अ शॉर्ट वेकेशन ऑफ सैटरडे एंड संडे टुगेदर, सो 2 days ऑफ लीव एंड देन रिप्लेनिशमेंट एंड देन ऑल्सो लाइक अ बिग ब्रेक, यू वुड नॉट लाइक टू गो एंड गेट अप इन द मॉर्निंग। जनरली स्कूल स्टूडेंट्स हैव दैट नाउ दैट
1: यस
0: दे हैव वेकेशंस, सो दे मे बी रिलैक्सिंग, बट देर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ यू नो समर कैंप्स दैट आर हैपनिंग।
1: या
0: बट
1: Kids
0: फॉर
1: are very enthusiastic to go to
0: करेक्ट, सर्टनली।
1: camps and they want to learn new things.
0: तो समर में भी उनकी छुट्टियों के दरमियान अगर आप उनको ऐसी चीज़ों में डालेंगे तो स्कूल और समर कैंप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। एक फ़र्क जो महसूस होता है वो ये कि समर कैंप के जो ड्यूरेशन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, चाहे शायद 1-2 घंटे हो सकते हैं या मैक्सिमम 3 घंटे। मान लीजिएगा कि आपको कुछ आर्ट सिखाना है, बच्चों को पेंटिंग सिखानी है, स्कल्पचर सिखाना है, तब आप शायद उन्हें 2-3 घंटे दे सकते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी। और गर्मियों में कहाँ जाएं, ये बड़ा मसला है ना? तो समर इज रियली रियली हार्श। तो 10:16 हमारी स्टूडियो सिक्योरिटी बता रही है। आपको बता दें कि आज का जो खास दिन है वो ये है कि कोल माइनर्स डे भी है आज। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ पर भी कंसंट्रेट करें क्योंकि सनस्ट्रोक्स की जो वारदातें हैं वो बेपनाह तौर पर नज़र आ रही हैं। एंड देन क्रिकेट का बुखार बरकरार है, चाहे वो समर हो या फिर विंटर्स। आईपीएल का सीज़न तो चल रहा है। और साथ ही साथ हम चाहेंगे, देखेंगे कि आज त्रिशा कृष्णन, जो कि साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिल और तेलुगु फिल्मों में ये अभिनेत्री ने काफ़ी काम किया है, उनका भी आज जन्मदिन है। और ओटीटी में ढेर सारी रिलीजेस हुई हैं, फिर ज़्यादातर रिलीजेस फ्राइडे होती हैं लेकिन सैटरडे संडे लोग ज़्यादा देखते हैं।
1: यस यस
0: तो
1: लाइक यू
0: आपने भी
1: मेंशन
0: कुछ देखा जागृति?
1: रिसेंटली। यस
0: कौन सी, कोई याद है? बिना नाम के ही हम देख लेते हैं। ये भी हो सकता है ना? तो ऐसी कुछ चटपटी बातें।
1: यार रेडियो मैनेज सुयोधना।
0: हाँ, तो मैं वही बता रहा था जागृति को कि हम बिना टाइटल देखे ही हम सीरीज देख लेते हैं, बिंज वॉचिंग कर लेते हैं। तो ढेर सारी चीजें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, चटपटी बातें होंगी। जागृति हमारे साथ है, जागृति को ये भी पता है कि हैदराबाद की गर्मी जो है उसको कैसे बीट किया जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हम एक गाना सुनते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मनम का पार्ट ऑफ इंदामा करी?
1: या व्हाई नॉट।
0: यस, सो अंदर की सेठ यानी का आर्टिस्ट एंड बाय योर साइड इज अ सॉन्ग, सो लेट्स लिसन टू दिस वन। नमस्ते हेलो आदाब में अगला जो गाना है वो है अंग्रेजी का गाना। और यहाँ पर मिक्स एंड मैच वाले गाने प्ले होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी को बारी बारी में प्ले करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा डोमिनेशन हिंदी गानों का रहेगा। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। नमस्ते हेलो आदाब।

0: that's the time you would like to take them out as well. Lots of people travel during summer vacations. The trains are filled, the airlines are going very, very high with fares, and also the bus fares and the other means of transportation, personal transportation, like you're going by car to a nearby place. So when was the last time that you traveled for a vacation, Jagruti?
1: It's a long time.
0: मेरे बाप रे, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है, इतना लॉन्ग भी नहीं हुआ होगा जिस तरह आपने लॉन्ग का आलाप जपा है. तो लॉन्ग का मतलब क्या है, तो कितना लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग?
1: It's about years.
0: Sorry, बापरे. तो कौन से बीसी में कुछ गए थे क्या? नहीं, बीसी की बात नहीं है, एडी की बात है. तो एडी में भी कहाँ पर, जैसे कि अब ये गाना जो हमने प्ले किया था वो 2000 का था, तो 26 साल हो चुके हैं इस गाने को, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी अच्छी खूबसूरत वाइब्स है. एंड सेड इज ऑल्सो नोन एज द बेस्ट फीमेल पॉप सिंगर, सो वी

0: लॉन्ग टाइम, अरे बाप रे, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है, इतना लॉन्ग भी नहीं हुआ होगा जिस तरह आपने लॉन्ग का आलाप जपा है. तो लॉन्ग का मतलब क्या है, तो कितना लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग?
1: इट्स अबाउट इयर्स.
0: इयर्स, अरे बाप रे, तो कौन से बीसी में कुछ गए थे क्या? नहीं, बीसी की बात नहीं है, एडी की बात है. तो एडी में भी कहां पर, जैसे कि अब ये गाना जो हमने प्ले किया था वो 2000 का था, तो 26 साल हो चुके हैं इस गाने को, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी अच्छी खूबसूरत वाइब्स है. एंड सेड इज ऑल्सो नोन एज द बेस्ट फीमेल पॉप सिंगर, सो वी स्टार्टेड विद टू फीमेल यू नो सॉन्ग्स. आशा भोंसले हिंदी में इजाज़त से, हमने उनकी इजाज़त के बगैर ही वो गाना प्ले किया. फिर उसके बाद सेड, तो कब, बहुत पहले का मतलब ये है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल?
1: 10 years.
0: अच्छा, तो 2016 में आप गए थे कहाँ?
1: To my grandmother's house.
0: अरे कहाँ पर है आपके ग्रैंड मॉम का घर? कहाँ, कुछ तो जगह का नाम होगा, वो ऐसी कोई जगह होगी दुनिया में गूगल के नक्शे में नजर आएगी.
1: Yeah, of course.
0: तो कहाँ पर है वो?
1: It's in सूर्या पे.
0: अरे वो तो पास में ही है, तो 135 किलोमीटर, आंख बंद करके आंख खोलने तक पहुंच जाते हैं. बेपनाह चीज़ें यहाँ पर पास में हैं. और बाय द वे, आपने सूर्यापेट की बात की, तो आपको बता दें सूर्यापेट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तेलंगाना में. इट हैज़ रीच 46.5, ऑलमोस्ट 47. तो हर प्रांत, हर जगह जो तेलंगाना की है वहाँ पर गर्मी का बेपनाह प्रकोप है. ऐसा लग रहा है कि अजाब आ गया है. तो आप अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि गर्मी से लड़ना एक पब्लिक हेल्थ इश्यूज नहीं रहा है बल्कि एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि उससे जितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट होने दीजिए, इनकम होने दीजिए. अगर आप समर में बाहर काम करते हैं तो शायद आपको काम ना मिले, या शायद आप काम मिल भी जाए तो आप कर नहीं पाएंगे, और उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, सनस्ट्रोक आ सकता है, और आपकी दिल की जो धड़कन है वो भी शायद थोड़ी कम हो सकती है ना?
1: Yes.
0: तो अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप ऐसी जो नेचर्स फ्यूरी कहते हैं वैसी चीज़ों के लिए आप तैयार होना चाहिए. तो यही हमारा सबसे ज़्यादा मकसद है कि प्लीज़ डू बी अवेयर ऑफ द समर, बिकॉज समर कैन बी डेंजरस. देर आर ऑलरेडी 29 पीपल इन द स्टेट हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक इज वेरी वेरी यू नो डेडली, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. हाउ डू यू प्रोटेक्ट इज अनदर इशू, वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट. जागृति और मैं यहाँ पर आपके लिए एक जागृति भी बना रहे हैं, सम अवेयरनेस अबाउट इट. तो नाम में ही अवेयरनेस है.
1: Yes.
0: है ना? तो चलिए, अगला गाना कौन सा सुना रहे हैं आप? कौन सा गाना आपको?
1: माहीवे.
0: माहीवे से पहले हम चाहते हैं कि वो वादिया मेरा दामन वाला गाना सुन ले.
1: Yeah, sure.
0: तो लता मंगेशकर की आवाज में फिलहाल 3 लेडीज थे, एक साथ हैट्रिक सॉन्ग्स हमने आपके लिए प्ले कर रहे हैं. आशा भोंसले का हमने किया है, और फिर इसके बाद है वादिया मेरा दामन लता मंगेशकर की आवाज में. तो आइए हिंदी सेगमेंट से, नमस्ते हेलो आदाब में अगली जो पेशकश है वो ये है.

0: ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको गर्मा में जो याद आती है वो है वादियाँ। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर सूरज ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक चमक रहा है, अपने पूरे शबाब में है, अपने पूरे किरदार के साथ वो ऐसा गजब ढा रहा है, तो उस वक्त आपको लगता है कि कहीं वादियों में चले जाते हैं, कहीं ठंडी जगह, कहीं पहाड़ पे चले जाते हैं। तो 10 साल के बाद भी आपको वादियों में जाने का मौका मिलेगा?
1: यस
0: नहीं?
1: सर,
0: हाँ, मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। तो जागृति सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ 10 साल के बाद। वादियों में जा सकते हैं, और हिंदुस्तान में खूबसूरत से खूबसूरत वादियाँ हैं। हिंदुस्तान इतना अजीम मुल्क है कि जहाँ पर हर नज़ारा देखने के लायक है। यहाँ पर रेत है, समंदर है, पहाड़ है, और सर्दी वाले इलाके भी हैं। चाहे वो कश्मीर होने दीजिए, या हिमाचल की ठंडी हवा होने दीजिए, या उत्तराखंड में जो बर्फ पड़ती है वो होने दीजिए, तो लोग अपने आप को स्केप भी करते हैं। अभिलाषा फिल्म से आपने गाना सुना, 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मीना कुमारी, संजय खान और नंदा और रहमान के लीड रोल में ये फिल्म काफ़ी खूबसूरत रही। और स्पेशली अगर बात की जाए तो फिल्म प्रोड्यूसर वॉज ऑल्सो बिल्डर बिल्ट ए बंगलो इन व्यू ऑफ द पेमेंट फॉर मीना कुमारी। ये खास बात है कि पेमेंट के बजाय आप मकान दे सकते हैं। उस जमाने में बार्टर सिस्टम की तरह ये सिस्टम चल रहा था। और वादिया मेरा दामन जो है वो इस वजह से भी खूबसूरत है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन रहा है वो आरडी बर्मन ने किया था, मजरू सुल्तानपुरी के खूबसूरत से बोल थे। और यहाँ पर दो गाने ऐसे मशहूर हुए हैं, बल्कि एक मेल वर्जन जो मोहम्मद रफ़ी साहब का था, तो दूसरा जो था वो लता मंगेशकर का था। जुमला इस फिल्म में 6 गाने थे, 6 में से 2 तो वही गाने थे। दोनों भी बड़ी ही खूबसूरत थे, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी वाला वर्जन होने दीजिए या फिर लता मंगेशकर वाला वर्जन होने दीजिए। तो ऐसे ही कुछ

0: खास नगमे हम लेकर आए हैं नमस्ते हेलो आदाब में। इस शो की जो खास बात है वो ये है कि हम यहाँ पर ना सिर्फ नए पुराने गाने प्ले करते हैं बस साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी के गाने भी प्ले करते हैं, है ना कमाल की बात। ये बहुत कम ऐसे होता है, ऐसा शायद ही कोई ज़्यादा शो हो। आई रियली डोंट नो, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू नो ऑल दोस थिंग्स?
1: Change is necessary.
0: Change is certainly necessary. तो वो change को आप कहाँ पर अपने आप को निछावर करते हैं वो देखना ज़रूरी हो जाता है, है ना। एक कमाल की बात तो ये होती है कि इस combination में जैसे सुर, लय, ताल, हिंदुस्तानी जो music है, मौसीकी है, वो ज़्यादातर हमने उधार ली है हमारी फोक म्यूजिक से, लेकिन अंग्रेजी जो वाले गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिदम और राइम पर निर्भर करते हैं। एक पूरा कंपोजिशन होता है, एक उसकी ग्रामर होती है, और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है वो ओरल ट्रेडिशन में विश्वास ज़्यादा करता है, है ना। ऐसी कमाल की बातें और ऐसी कमाल की म्यूज़िक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, जुड़िए, और हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ और खूबसूरत से खूबसूरत नगमे सुनाएं। तो सुनते हैं और एक ऐसा ही अंग्रेज़ी वाला नगमा, क्योंकि हमने एक हिंदी वाला नगमा बल्कि दो तीन प्ले किए थे। तो लेट्स नाउ लिसन टू वेस्ट लाइफ स्वेर इट अगेन, फिर उसके बाद महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम एक और गाना सुनेंगे। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास शो जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन
1: एंड आई एम आरजे जागृति।

Sagar, and we couldn't save them despite all our efforts. Now that was another, you know, straight tragedy. But Coal Miners' Day also reminds us that the day perhaps highlights the working condition acknowledges the miners' effort in supporting electricity, steel, cement production, and whatnot. And it also reminds the authority, society, about the need for a better safety standards and health protocol that we need to provide them. So in the context of India, over half of country's commercial energy actually is met by the coal. So is wajah se bhi usko recognize karna behad zaruri hai. 1952 se humne coal miners ko ek recognition di hai. ये आज एक ऐतिहासिक दिन है माइनिंग कम्युनिटी के लिए और एक ऐसा दिन है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ना कमाल की बात जी हाँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा गाना जो आपको कभी ना कभी अजनबी बना देता है. कभी आपको ऐसा लगा कि शायद किसी के साथ अजनबी हो जाए? तो पहले मुलाकात होती है, तब अजनबियत दूर हो जाती है, फिर अजनबी बनने का मन करता है. ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. ठीक है, तो लेकिन महेंद्र कपूर ने एक ख़ास तरीके से इस फिल्म में गाना गाया था और इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्म थी और उसका एक नगमा मुझे अभी जो याद आ रहा है. तो चलिए आपके लिए हम प्ले करते हैं ये ख़ास गाना.

0: ऑलराइट, तो कितनी बार अजनबी बनने का मन हुआ है? तो मैं ये जागृति से पूछ रहा था। तो कभी ऐसा महसूस होता है कि फेयरवेल में हमें लगता है कि 3 साल तो हमने बिता दिए कॉलेज में या फिर किसी जॉब में, और अब मौका है कि एक बार फिर से अगर अजनबी बन जाए, दोबारा वो चीज़ों में चले जाएं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो कैसे लगेगा?
1: इट फील्स गुड.
0: इट फील्स गुड, ओके, या सो व्हाई पीपल एक्चुअली बिकम नॉस्टैल्जिक इज ऑलवेज द क्वेश्चन। ये जितने सारे नगमे हैं, जैसे पुराने नगमे हैं, आपने देखा होगा ये गाना जो है हमने लिया था गुमराह फिल्म से। गुमराह एक बहुत ही नाजुक फिल्म थी। नाजुक इस वजह से क्योंकि वहाँ पर औरत और मर्द के रोल्स और जो किरदार हैं उनको बड़ी बारीकी के साथ समझाने की कोशिश की थी कि कहाँ लक्ष्मण रेखा हो सकती है। शादीशुदा औरत अगर किसी दूसरे मर्द से रिश्ता बनाती है तो वो कैसे समाज पर असर करता है? तो ऐसी बड़ी इम्पोर्टेंट थीम को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में नहीं था वो, आज जो हम देखते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत, इट्स जस्ट लाइक एक त्रिकोणी वाली रिलेशनशिप है। वाइफ हस्बैंड हैं, उनके दरमियान प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है, लेकिन एक दूसरे शख्स के आ जाने से जिंदगी में क्या हो सकता है और क्या ये जो लड़की है इसके ऊपर जो संकट आ सकता है, क्या वो लक्ष्मण रेखा को पार कर पाएगी? शायद मर्द कर सकते हैं, एक औरत करना थोड़ा मुश्किल है। शायद इसी वजह से ये फिल्म इतनी कामयाब रही है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत तरीके से इसे लिखा गया है, और गाने तो अद्भुत है ही। महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने गाना सुना, तो ऐसा कभी कोई, मैं कहूँगा कि एथिकल डायलेमा हो सकता है क्या? हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी एथिकल डायलेमा इन योर लाइफ सिमिलर टू दिस वन? व्हाट डू यू थिंक जागृति? जागृति अभी बोल रही है कि नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत है, तो सोचिए। और उस वक्त तक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गाना आपके लिए प्ले करेंगे, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू रोप इन रॉड स्टीवर्ट, व्हेन आई नीड यू। आई थिंक सडनली दिस सॉन्ग इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर थिंकिंग। देयर वी गो।

दोस्तों हम लेंगे 11 बजे ठीक एक छोटा सा ब्रेक न्यूज़ हेडलाइंस के लिए, देश और दुनिया की खबरों के जानने के लिए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, फिर उसके बाद नमस्ते हेलो आदाब का सफर जारी व सारी रहेगा।

0: ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस शो के। जो हम अहम बानी हैं वो है जागृति और मैं हूं आपका रेडियो मैन। तो इन तीन अल्फाज के साथ नमस्ते, हेलो, आदाब, ये हमारी ग्रीटिंग्स हैं आप सभी के लिए। उम्मीद कि आप बरकरार होंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा कल की बनिस्बत उतना ज़्यादा नहीं है। फिलहाल पारा जो है वो हमारे सर पर चढ़ने ही वाला है। 36 डिग्री फिलहाल पारा है और उसकी जो ह्यूमिडिटी है 29% तक है। हवाओं का जो रुख है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है, मामूली सा है, बल्कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो लेकिन एक और ख़ास बात ये बताई गई है कि 5 मई से शायद कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तो है ना खुशखबरी, इज़न्ट इट, खुशखबरी है।
1: यस
0: हाँ, तो खुशखबरी होनी चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है। तो नमस्ते औलाद, आपका जो सिलसिला है वो हम बरकरार रखेंगे और ऐसे ही चलाएंगे। तो और क्या चीज़ें आप हमारे श्रोताओं को, हमारे ऑडियंस को बताना पसंद करती हैं जागृति? कुछ और चीज़ें हैं आपके पास जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे टिप्स जो समर को बीट कर सकते हैं?
1: यस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ इन द समर बाई कैरिंग एन अम्ब्रेला, वेयरिंग स्कार्फ्स एंड ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर.
0: Yeah, I think certainly the last point is more important because sweat is something that the body tries to cool yourself, but if you can hydrate yourself, hydration is so important because in summer we easily get dehydrated. Lots of our important minerals and we call it microfibers or micronutrients, they might even come out. So how do you replenish that? How do you really compensate that is the question. Isn't that true? Okay, so on that note, चलिए हम चलते हैं एक ऐसी आवाज़, लता मंगेशकर, जो हर दिल की धड़कन है, चाहे वो 1980 होने दीजिए या 2026, 50 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवाज़ इतनी बरकरार है, इतनी बेकरार है और हम सब बेकरार हैं इस आवाज़ को सुनने के लिए। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में हम सुनेंगे एक ख़ास नगमा जो कि है शीशा हो या दिल हो टू आखिर टूट जाता है। बड़ा माने खैज़ ये गाना है और माने इस वजह से भी है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक शिकन, दिल में कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है। तो लीजिए एंजॉय कीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे शो को ऐसे ही सुनते रहिए। हम आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन
1: एंड आई एम आरजे जागृति.
0: और हम दोनों मिलकर यहाँ पर आपके लिए ये एक खास नगमा प्रस्तुत कर रहे हैं। और लीजिए सुनते हैं।

0: ऑलराइट दोस्तों, अगला गाना तैयार है। अगले गाने से पहले हम आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास शो जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ रेडियो मैन।
1: एंड आई एम जागृति।
0: तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं। बातें इस बार जो है वो फिल्म अप्रिसिएशन की है, म्यूज़िक अप्रिसिएशन है, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ सकें और हमसे ऐसी बातें कर सकें। तो ये जो फिल्म थी आशा, काफ़ी ख़ास फिल्म रही है हिंदुस्तानी फिल्म जगत में, क्योंकि एक ड्रामा फिल्म थी जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश ने, और इसमें मुख्य भूमिका में थे जितेंद्र, रीना रॉय और रामेश्वरी। इसकी मौसीकी कंपोज की थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो काफ़ी खूबसूरत गाने रहे हैं और काफ़ी पसंद भी की गई थी, एक फैमिली ड्रामा थी समझिए, है ना। तो 11:15, तो क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे रहेंगे दूसरे और गाने, तो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव।
2: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
3: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
4: తరం మారింది, శ్రీ చైతన్య సిద్ధమైంది.

0: Alright, Om Shanti Om, and that, the title of the song has become the title of the movie.
1: Yeah,
0: So, have you
1: that's
0: seen that film?
1: fantastic.
0: Yes, it is indeed. And have you seen the film?
1: Om Shanti Om.
0: Yes.
1: Yes, yeah, I have seen it.
0: Yeah, so same स्टोरी, कर्ज में भी वही स्टोरी है, लेकिन
1: ओके
0: कर्ज जो है वो एक किस्म की ओरिजिनल स्टोरी है जिसको लेकर जो ना दूसरे डायरेक्टर ने ओम शांति ओम बनाई. लेकिन ख़ास बात यह है कि सुभाष घाई ने इस फिल्म को अहेड ऑफ द टाइम्स कहा है. उस ज़माने की काफ़ी साइकोलॉजिकल फैंटेसी वाली फिल्म थी, और फिर पुनर्जन्म में जो बदला होता है, जो रिवेंज है, उसको लेकर ये फिल्म बनी थी. काफ़ी री इनकारनेशन की फिल्में कभी फेल नहीं हुई है, माना जाता है, कभी फ्लॉप नहीं होती है.
1: यस, आई सी दैट.
0: इंडिया में वह री इनकारनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना. तो काफ़ी लंबा चौड़ा कास्ट था इस फिल्म में, लेकिन गाने भी बहुत खूबसूरत थे. जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी जो थी वो बहुत अच्छी थी, आनंद बख्शी के बोल थे, और फिल्म फेयर में इस गाने को ओम शांति ओम और दर्द दिल दर्द जिगर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर तस्लीम किया गया है ना. कमाल की बात. और आपको पता है कि इस किस्म की काफ़ी फिल्में इंडिया में हैं, जैसे मधुमती होने दीजिए, कुदरत होने दीजिए, महबूबा होने दीजिए, और साथ ही साथ रीमेक्स भी हुई हैं मॉडर्न ज़माने में, जैसे योग पुरुष, और कन्नड़ा में भी कुछ फिल्में हैं. मैं एक दिन लौट के आऊँगा भी एक ऐसी फिल्म है, और कर्ज नाम की 2008 में भी एक फिल्म आई थी हिमेश रेशमिया की, वो भी है. और फिर पैसा ये पैसा, मैं 16 बरस की, और एक हसीना थी आशिक बनाया आपने, ओम शांति ओम, और फिर उसके बाद कोई फिल्म नहीं आई 2007 के बाद. तो इट्स हाई टाइम कि एक और ऐसी फिल्म बन सकती है. आपको क्या लगता है कि बन सकती है?
1: यस, एब्सोल्युटली.
0: हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बनना भी चाहिए. तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद एक और आपके लिए नगमा रहेगा, वो हम चाहेंगे कि हमारे जो कंट्री म्यूजिक है उस पर आधारित रहे. तो लीजिए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
2: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेली लॉ हमें सही राह दिखाती.
3: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं.
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in, या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
5: ఏ చోటైనా
6: శ్రోతల ఆనందాలగని
5: మధుర గానాల మనోరంజని
6: మన జనరంజని
7: మనసునే మీటకే నేస్తమా.
6: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు మాకు కాల్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324 0852, మరొక నెంబర్ 2324 0856. జనరంజని, శ్రోతల మనోరంజని, ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు మీ వివిధ భారతి 102.8.

0: All right, Kenny Rogers with that very beautiful lovey-dovey numbers, and you have lost that loving feel. And such a marvelous artist, been long time that he's there, and also dominated the charts, chartbusters, and then the whole, you know, discography tells you a lot about his variety and diversity of the songs.
1: Yes,
0: yeah,
1: of course.
0: So after Kenny Rogers, I mean, one of the artists with a great beard as well, and not many times that you see the Western musicians with the wonderful stubble. That stubble is so good, and it gives you a feeling that, yes, it's homegrown in that sense. तो 11:38 मिनट हमारे पास हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 39 मिनट कह सकते हैं. तो आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक ख़ास कार्यक्रम जो कि है आकाशवाणी हैदराबाद के माध्यम से 101.9 पर. ये है FM रेनबो और मैं हूँ आपका रेडियो मैन
1: एंड आई एम जागृति.
0: जागृति, तो समर के टाइम पे आप कौन से खाने पसंद करती हैं, कौन से ऐसे जो बेवरेजेस हैं उसको पसंद करती हैं? सो डू यू आल्सो कुक और यू एक्चुअली गेट समवन टू कुक एंड यू नो गिव यू, व्हिच वन डू यू लाइक इट?
1: एक्चुअली आई लव कुकिंग.

0: हाँ तो फिर समर के लिए खास चीज़ें भी होनी चाहिए। तो गर्मा में क्या चीज़ें आप बनाना पसंद करती हैं? ज़्यादातर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती
1: कमिंग टू द फ्रूट्स,
0: हैं?
1: आई लव मैंगोस।
0: अच्छा, अरे वाह, वो तो नेचर ने हमें बहुत अबंडेंट दिए हैं और उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो पके पकाए होते हैं।
1: इट्स अ मैंगो पिकल।
0: अरे वाह, तो पिकल जो है वो समर में ज़रूर आते हैं, लेकिन समर में अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर तेल होता है, फिर मिर्ची होती है, बहुत सारा नमक होता है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़बान के जो चटखारे हैं और उसके लिए लजीज और लज्जत भरी जो आपके अचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और आम का अचार तो काफ़ी मकबूल है, काफ़ी मशहूर है ना?
1: यस,
0: ओ गुड। तो कहाँ, आपके घर से आता है या फिर आप खुद बना लेती हैं? शायद होता ये है कि बहुत सारे लोग अपने माँ के घर से या फिर अपने दादी नानी के घर से लाते हैं अचार।
1: माँ से, माँ के घर से।
0: माँ के घर से भी अचार आ रहा है, वाह वाह, तो हमें भी कुछ अचार दीजिए। माँ के घर से अगर
1: श्योर
0: अचार आ
1: श्योर
0: रहा
1: श्योर
0: है तो फिलहाल अचार की यहाँ पर बात हो रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं पानी पी लेता हूँ और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद रहेगा एक खूबसूरत सा गाना, क्योंकि फिल्म का नाम ही खूबसूरत है, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए।
2: మార్కులు సాధించిన
3: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
2: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థే.

0: ऑल राइट, इनकलाब जिंदाबाद। तो कितनी बार आपने ऐसा कोई परचम या कोई फ्लैग ऐसे उठाया है, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कभी नारे लगे हैं आपकी जिंदगी में? कुछ
1: नेवर
0: नेवर? क्यों क्यों नहीं हुआ है ऐसे? अरे
1: डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी।
0: बाप रे, तो आप निकालिए अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या
1: या
0: है,
1: नेक्स्ट टाइम फॉर
0: नेक्स्ट
1: श्योर।
0: टाइम जरूर होना चाहिए, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद एक बहुत अहम नारा है जो जुल्म और सितम होता है और जब नाइंसाफी होती है, इंसाफ के लिए उठा हुआ एक नारा कह सकते हैं। तो गानों में भी ये नारे थे, देशभक्ति में भी, जिस तरह हमने अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी की और एक यूनिक तरीके से अपना फ्रीडम हासिल किया, तो इस वजह से इनकलाब जिंदाबाद। तो कभी कभी घर वालों के खिलाफ भी हुआ है, कभी रस्सा कशी हुई है किसी घर वालों के साथ?
1: नो
0: अनबन नहीं होती है?
1: नहीं,
0: अरे बाप रे, ये कहाँ ये बहुत ही आइडियल कपल लग रहा है मुझे बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इतने, वरना वो रिश्ता ही क्या जहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं झगड़ा ना हो, तो होना चाहिए। तो ऐसे झगड़े बरकरार रखते हैं जिंदगी को, रिश्तों को, और साथ में साथ एक आनंद, जैसे होता है ना कि नमक, और हम अचार की बात कर रहे थे, अचार की तरह, अचार हमारे मेन डिश नहीं होता है, अचार थाली में अलग से अपनी जगह रखता है, और जब कभी भी हमें थोड़ा लगता है कि थोड़ा जायका अलग करना चाहिए, तो हम उससे उंगली में लगाकर चाट लेते हैं, तब तो ऐसे कुछ करना चाहिए, है ना? तो ऐसी बातें हम करेंगे। गर्मा में एक और अहम चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए हम उनको महफूज भी करते हैं। वी ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व अ लॉट ऑफ इंग्रीडियंट्स। या सो दैट्स अनदर बिग एक्सरसाइज दैट मैसिवली डन बाय द इंडियन फोक्स। विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट। तो 11:48 हो रहे हैं, तो हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में रहेगा हमारा दूसरा गाना, तो आप हमारे साथ यूं ही तैयार रहिए। तो चलिए हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद विली नेल्सन का कंट्री म्यूजिक से एक नगमा।
2: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కార్ లోన్ ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.6%, సౌకర్యవంతమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు 1,192 రూపాయల నుంచే ప్రారంభం. ఎక్స్షోరూమ్ ధరపై 100% ఫైనాన్సింగ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో. మీ కలర్ కారు మీ సొంతం అవ్వాలంటే పిఎన్బి కార్ లోన్ తోనే సాధ్యం. వివరాలకు www.pnb.bank.in లేదా మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
3: మాటైనా
4: పాటైనా

0: lots of, you know, thoughts, but try to erase them, empty them. Yeah.
1: It controls the thoughts.
0: Yes, indeed. No doubt about it. So 11 बजकर ऑलमोस्ट 55 मिनट हमारी स्टूडियो सिक्योरिटी बता रही है, तो हम लेंगे जल्दी से एक ऐसा गाना जिसकी तरफ हम दौड़ कर जा रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि ये जो गाना है, मनहर उदास ने इस गाने में 4 चांद लगाए हैं, और ये है कुर्बानी वाला, बहुत ही बहुत ज़्यादा मशहूर गाना, हम तुम्हें चाहते हैं।

0: जी हाँ, आप तन्हाई में जाने का मन है, 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे जहाँ पर आप जानेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारीक बारीक से खबरें हमारी न्यू दिल्ली की स्टूडियो से। तो ब्रेक के उस पार आपसे होगी मुलाकात।
1: साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वाम दल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
2: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
1: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में

विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब।
1: एंड आई एम आरजे जागृति।
0: जी हाँ, और मेरा नाम है रेडियो मैन। और नमस्ते हेलो आदाब का ये हमारा जो तीसरा लेग है, यानी कि द फाइनल वर्जन ऑफ नमस्ते हेलो आदाब, यानी कि हम 3 घंटे तक आपके साथ बने रहेंगे और 2 घंटे उसमें हो चुके हैं। तो इस अगले 1 घंटे या फिर 50 मिनट में हम चाहेंगे कि आपका साथ रहे। आप हमें व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस कर सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइन खुली रहेंगी 1 से 2 बजे के दरमियान। और 12:12 फ़िलहाल हो चुके हैं और लोग काफ़ी टेलीविजन स्क्रीन्स या फिर मोबाइल स्क्रीन्स पर इलेक्शंस का रिजल्ट देख रहे हैं, और हम यहाँ पर आपके लिए कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं 1980 से 1990 या फिर 2000 की ओर, जहाँ पर आपको ढेर सारी फिल्मी म्यूज़िक से हम आपको अप्रिशिएट करना सिखाएंगे। एक ऐसी फिल्म आई थी कुदरत, जिसमें 2 वर्जन भी बहुत पॉपुलर थे, और वो थे परवीन सुल्ताना का वर्जन जो हम आज प्ले करेंगे, किशोरदा का भी एक वर्जन है ये गाने का, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो ये गाना बहुत ही दिलकश है और आपको पसंद भी आएगा। तो क्यों ना जागृति, इस गाने से हम इस नमस्ते वाला आदाब की शुरुआत करें, इस घंटे की एक अहम और इम्पोर्टेंट पेशकश।
1: यस।

0: वाह, क्या गाना है! कभी आपने सुना है ये गाना? हैव यू एवर हर्ड दिस सॉन्ग? बिकॉज दिस सॉन्ग इज ऑल्सो क्वाइट अ सेलिब्रेशन ऑफ न्यू आर्टिस्ट इन सम सेंस।
1: Okay, I have never heard this song, but when I listen to this song now, it's very beautiful.
0: और इट्स ऑल्सो लाइक अ नोन सॉन्ग। कभी कभार ऐसे भी लगता है कि अरे ये गाना मैंने सुना नहीं है, लेकिन पुराना गाना ज़रूर है और शायद मैं गाने को जानता हूँ या जानती हूँ, ये फीलिंग भी आती है। एब्सोल्युटली। तो ये फिल्म भी जो थी वो पुनर्जन्म री इंकारनेशन पर आधारित थी। कुदरत, कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जो शायद हिंदुस्तानी फिल्मों में देखने को मिलता है, आम जिंदगी में तो नहीं मिलता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं हम लोग कि नहीं मिलता, लेकिन इस फिल्म ने ऐसी एक धुन पैदा कर दी थी कि जो प्यार आपको एक जन्म में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पुनः

0: हर जन्म लेना जरूरी हो जाता है। शायद इसी वजह से राजेश खन्ना और हेमा मालिनी का जो मिलन है इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत रहा है। तो उम्मीद कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम यहाँ पर एक से बढ़िया एक गाने लेकर आए हैं। मैं हूँ रेडियो मैन और शो का नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और हम पहुँच रहे हैं रेडियो की तरंगों के संग जो के है 101.9 के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे रहेगा एक और खास गाना।
1: మీ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసీ ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియంతో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది। ఎల్ఐసీ, హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్।
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ऑलराइट दोस्तों, शाम का जो सन्नाटा है वो शायद इस गाने में नजर आता है। और शाम का गाना हमने दोपहर में इसलिए भी आपको प्ले करके दिखाया क्योंकि इस गाने में हम चाहते हैं कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। वेंचरिंग आउट इन द हॉट समर इज नॉट एडवाइजेबल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स राजेश, हु इज गोइंग टू एनथ्रॉल यू फ्रॉम 2 o'clock, ही हैज ऑलरेडी अराइव्ड एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम वॉज व्हाई डिड यू कम सो अर्ली। ही सेड अन्ना एंडल एंड आई कैन नॉट जस्ट डिनाई दैट। आई एम श्योर जागृति वुड अग्री विथ मी।
1: Yes, sir. Outside is very hot.
0: Yeah, so we may not be able to feel in this AC cozy environment, but the one who has come from outside will tell you a lot about it. So the temperatures are soaring, so be careful, do not venture out unless until it is non-negotiable. That means you are desperate to go, and that is much needed. So on that note, we are going to move on, और हम उम्मीद करेंगे कि 5 तारीख के बाद मौसम का जो विभाग है, मेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उसने ये प्रिडिक्शन दिया है, देर इज़ अ फोरकास्ट दैट इट्स गोइंग टू रेन। तो दिन में धूप निकलेगी, शाम में बारिश होगी, तो मौसम थोड़ा अच्छा खुशगवार रहेगा। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा, 90s के गाने, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 2000 में भी प्रवेश करेंगे। एक फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर एक फिल्म आई थी और उसी पर आधारित ये गाना है। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गाना।

0: ऑलराइट साथियों, द 1990s में या फिर 1980s का अगर दौर देखेंगे हिंदुस्तानी फिल्मों में, एक ख़ास जो जॉनर पैदा हुआ वो जॉनर ये था कि फैमिली वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी फिल्में बनी थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली और उस ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली शायद नहीं हुआ करती थी, तो जॉइंट फैमिली के जो सिद्धांत थे, जो उनके वैल्यू सिस्टम थे जिसे तेलुगु में कहते हैं विलुवलु, तो उसको ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो अगर आप मुड़कर देखते हैं 30 साल 40 साल बाद, वो सब स्कैटर्ड हो चुके हैं, दे हैव ऑल स्प्लिंटर्ड इन टू इट, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक यू हैव टू रिक्रिएट दैट। सो एवरी सोसाइटी हैज़ टू गो थ्रू दिस क्राइसिस मोमेंट एंड दे हैव टू इवॉल्व इट। नथिंग इज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर, डोंट यू थिंक जागृति? दिस इज
1: यस
0: ऑल्सो ट्रू।
1: एब्सोल्युटली सर।
0: यप, तो जागृति का भी यही मानना है। आपका क्या मानना है हमें ज़रूर आप बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402323482 और हमारी फ़ोन लाइंस खुली रहेंगी 1 बजे से तकरीबन 1:45 तक, जब तक हम यहाँ पर हैं इस शो में, वो रहेगा हेलो रेनबो। फ़िलहाल जो आप सुन रहे हैं, शो का नाम है नमस्ते हेलो आदाब और मेरा नाम है रेडियो मैन,
1: और मेरा नाम है जागृति।
0: और हम दोनों यहाँ पर आपको रेडियो की तरंगों के साथ पहुँचा रहे हैं कुछ खूबसूरत से नगमे। फैमिली वैल्यूज़ होने दीजिए, या फिर ये जवानी है दीवानी होने दीजिए, या फिर एक और एक एक गाना आया था मोहब्बते वाला, जब 2000 में हमने एंटर किया था, तो मल्टी स्टारर फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ढेर सारे, ऑलमोस्ट हाफ अ डजन कैरेक्टर्स। तो उसी से हमने एक गाना लिया है, उम्मीद कि आपको ये गाना पसंद आएगा। तो वो गाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये गाना।

0: मल्टी स्टारर फिल्म मोहब्बतें से आपने गाना सुना, और मोहब्बतें तो आपने देखी होगी। दिस वाज अ वेरी ब्रांड ग्रैंड फिल्म। इट वाज ऑलमोस्ट ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। अ बिग डायरेक्टर एंड देन द बिग ह्यूज कास्ट एंड क्रू, और बढ़िया सी लोकेशंस, फॉरेन लोकेशंस, और क्या चाहिए।
1: Really? I
0: यस
1: haven't watched, but I'll watch for sure.
0: हाँ, लंबी फिल्म है, काफ़ी बड़ी है। मोहब्बतें 2000 में रिलीज़ हुई थी, ऑलमोस्ट 25 और 26 साल हो चुके हैं। लता मंगेशकर की वही मखमली आवाज़ इस फिल्म में बरकरार रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नमस्ते हेलो आदाब में। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहे हैं। वी आर इंचिंग टूवर्ड्स अ क्लोजर एट 1 o'clock, एंड देन वील स्टेप इन टू हेलो रेनबो। बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, एंड पोस्ट दैट वी विल हैव ये जवानी है दीवानी फिल्म से एक और गाना।
2: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాథ్.

0: ये जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए। और नमस्ते हेलो आदाब का समय होता है यहीं पर ख़त्म, लेकिन मैं और जागृति रहेंगे जागरूक हमारे दूसरे शो में जिसका नाम है
1: हेलो
0: हेल।
1: रेनबो।
0: जी हाँ, तो हम लेंगे एक छोटा सा अल्पविराम, फिर आपकी खिदमत में दोनों का ये शो हेलो रेनबो जारी रहेगा।

0: రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటిసారిగా జనగణనకు సిద్ధమవుతోంది. జనగణన మొదటి దశ ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు. దేశంలో మొదటిసారిగా డిజిటల్ విధానంలో ఇండ్ల జాబితా మరియు ఇండ్ల గణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు. ఏదైనా డిజిటల్ టూల్ లో సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ పోర్టల్ ద్వారా SC.census.gov.in లో మీ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
1: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
2: ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं, आपने अपने स्टेशन यानी कि ये जो स्टेशन है रेनबो FM को सुन रहे हैं अपने खास रेडियो पर, और वो है आपका शो हेलो रेनबो, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन
3: एंड आई एम आरजे जागृति.
2: और हम दोनों मिलकर यहाँ पर ढेर सारे गानों को एक बार तरतीब दिए हैं, और इस प्लेलिस्ट को कंसीव करने के लिए हमें काफ़ी वक्त और मशक्क़त करनी पड़ी. हम चाहते हैं कि ऐसी प्लेलिस्ट बने जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स इन द एरा ऑफ 2001 से लेकर 2005 तक के गाने हैं, चाहे वो गिला गिला होने दीजिए या फिर मर्डर फिल्म. मर्डर फिल्म एक बहुत ही रोमांचक फिल्म रही है, और साथ ही साथ उसने गानों के लिए, स्टोरीज के लिए बहुत कुछ रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं. तो 1:22 हुआ चाहता है. हम चाहते हैं कि अगर आप अभी कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 2323-4821 पर हमें कॉल कीजिए, और 2323-4822 पर हमें मैसेज कीजिए.

0: ऑलराइट, सो आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो जिसका नाम है हेलो रेनबो। हेलो रेनबो में हमारे साथ जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो ज़्यादातर ये मैसेजेस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, और कुछ मैसेजेस भी हमें मिले हैं। और कुछ इस तरह से मोटा भाई का मैसेज आया है, अश्विन जो लिखते हैं कुशाल मार्केट खोटी से, कि उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे उदय होता है। धैर्य और तपस्या जिस इंसान में है वही संसार को प्रकर्षित कर सकता है। यानी कि सूरज जो है वो वाकई आहिस्ता आहिस्ता ओपन होता है, लेकिन फिलहाल गर्मी का मौसम है। मोटा भाई आप भी जानते हैं कि सूरज फिलहाल अपने पूरे प्रकोप के साथ बरकरार है। तो अगर आपके भी मैसेजेस हैं तो हमें जल्दी से रवाना कीजिए 0402-3234822, और हमें कॉल भी कर सकते हैं 0402-3234821 पर। और मैं हूँ रेडियो मैन, और मेरे साथ है,
1: आरजे जागृति।
0: और हम दोनों मिलकर यहाँ पर रेनबो की तरफ से आपको फिर से कहते हैं कि हेलो रेनबो।

0: ऑलराइट दोस्तों, हमारी जो घड़ी है वो बता रही है कि 1 बज के ऑलमोस्ट यानी कि 53 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये टाइम है हमें आपसे अलविदा कहने का। दिल तो नहीं चाहता कि अलविदा कहें, और इतना ज़बरदस्त माहौल है स्टूडियोज़ में, ठंडी ठंडी एसी की हवा चल रही है, तो इस वजह से लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा जो दूसरा शो है वो तैयार है। तो राजेश आपको एंटरटेन करेंगे, तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई, और मई में हम दाखिल हो चुके हैं। ये महीना थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, और ये महीना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टे इंडोर्स एज फार एज पॉसिबल, एंड दिस इज़ योर रेडियो मैन टेलिंग यू टाटा बाय बाय एंड हास्ता ला विस्ता बेबी, एडियोस अमिगोस।
1: एंड आई एम आरजे जागृति।

0: Rainbow 101.9.
1: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి రెయిన్బో ఎఫ్ఎం 101.9 రెయిన్బోతో మీ జీవితం రంగులమయం.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ರೇನ್ಬೋ 101.9.

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: స్టూడియోలో టైం 5:45. ఇప్పుడు ఆరోగ్య జీవనం కార్యక్రమంలో పక్షవాతం అనే అంశం గురించి ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కొండా మురళీకృష్ణ గారితో పరిచయ కార్యక్రమం రెండవ భాగం వింటారు. పరిచయకర్త శ్రీ ఎస్ రమేష్ సుంకసారి.

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Hansen! Sind die Pumpe in Entdeckung? Stopp! An Action! Bye.

0: हाय दोस्तों, प्रोग्राम नरंग का आगाज़ करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर और पेशकश है फहमीदा फहमोश की।
1: मौजिज़ सामाइन, आज मैं एक ऐसे लफ्ज़ पर बात करना चाहती हूँ जो सुनने में तो बहुत सादा है, लेकिन इसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, और वो लफ्ज़ है वफादारी। आज के दौर में जहाँ हर चीज़ की कीमत लगाई जाती है, लेकिन वफादारी वो वाहिद दौलत है जो खरीदी नहीं जा सकती बल्कि कमाई जाती है। दोस्ती हो या ख़ानदानी ताल्लुकात, वफादारी के बगैर कोई भी रिश्ता देर पा नहीं हो सकता। अगर मुआशरे के अफराद एक दूसरे के साथ वफादार हो तो धोखा दही और बेयकीनी का खात्मा होता है। कहा जाता है कि वफादारी की पहचान खुशहाली में नहीं बल्कि आजमाइश के वक्त होती है। मुखलिस लोग वही होते हैं जो हालात बदलने के बावजूद अपना मौकफ या साथ नहीं बदलते। आज के दौर में जहां मफाद परस्ती आम है, वहां एक वफादार इंसान किसी कीमती खजाने से कम नहीं होता। अगर आप अपने उसूलों और ज़मीर के साथ मुखलिस नहीं हैं तो आप किसी और के साथ वफादार नहीं हो सकते। याद रखिए, वफादारी सस्ते लोगों के बस की बात नहीं है, ये एक महंगा तोहफा है। इसकी तवक्के कभी कमज़र्फ लोगों से ना रखें। सच्ची वफादारी सिर्फ शोर मचाने या दावा करने का नाम नहीं है। असल वफादार वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत का पहरा दे। अगर कोई शख्स आपके पीछे आपकी बुराई सुनकर खामोश रहता है तो वो वफादार नहीं। वफादारी का तकाजा है कि पीठ पीछे भी वैसा ही रहा जाए जैसे सामने। कहा जाता है कि वक्त एक ऐसी छलनी है जो मुखलिस और मतलब परस्त लोगों को अलग कर देती है। खुशहाली में तो साए भी साथ चलते हैं, लेकिन वफादार वो है जो अंधेरों में चिराग बनकर साथ खड़ा हो। आज के कॉरपोरेट दौर में वफादारी का मतलब सिर्फ एक ही जगह काम करना नहीं बल्कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपनी पूरी सलाहियतों और ईमानदारी से काम करना है। वफादारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो आप उसका साथ दें। अगर आपका दोस्त या इदारा गलत रास्ते पर है तो वहाँ वफादारी का तकाजा खामोशी नहीं बल्कि इसलाह है। गलत काम में साथ देना वफादारी नहीं बल्कि जुर्म में शराकत दारी है। आजकल बहुत से लोग वफादारी का नाटक सिर्फ उस वक्त तक करते हैं जब तक उनका मफाद वाबस्ता होता है। जैसे ही फ़ायदा ख़त्म होता है उनकी वफादारी भी ख़त्म हो जाती है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि वफादारी ज़रूर निभाएं, लेकिन उसे अंधी तकलीद ना बनने दें। सच्ची वफादारी वो है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। जहाँ आपकी खुददारी और सच्चाई खतरे में हो, वहाँ वफादारी के मायने बदल जाते हैं। इसीलिए बाकिरदार

से बचाओ। मीर व ग़ालिब ने सदा मेरी पधिराई की, ज़ौक़ व सौदा ने ख़सीदे की रविश अपनाई। फैज़ व चंदा की है गज़लों में मेरी रानाई, जोश की फ़िक्र में सौ तरह से मैं दर आई। मैं हूँ उर्दू, मुझे लिल्लाह तबाही से बचाओ। आज माइल की सदा आती है, उर्दू को बचाओ। मेरी मसनद पर किसी साहिबे उर्दू को बिठाओ। कोई मिस्टर जो मुनासिब ना हो, मैडम को बुलाओ। मेरे दम से है कुतुब खानों की जीनत, सुन जाओ। मैं हूँ उर्दू, मुझे लिल्लाह तबाही से बचाओ। ये वो मसनद है जिसे अब भी है शाही की तलाश, सरपरस्ती के लिए सादा निगाही की तलाश। ना डरे तख्त से जो ऐसे सिपाही की तलाश, चल सके आग पर ऐसे किसी राही की तलाश। मैं हूँ उर्दू, मुझे लिल्लाह तबाही से बचाओ। हैं कहाँ अहले ख़लम सारे, शिताब आ जाओ। सच मैं कहती हूँ यह है कारे सवाब, आ जाओ। मेरी मिट्टी भी ना हो जाए ख़राब, आ जाओ। है मेरा अहले दकन तुमसे खिताब, आ जाओ। मैं हूँ उर्दू, मुझे लिल्लाह तबाही से बचाओ। हिंद के सैयदो आज़ाद, सुनो मेरी सदा। तुम ना आए तो मुझे कौन संभालेगा भला। दम घुटा जाता है राहों में, उजाला हो ज़रा। किस कदर कीमती हूँ मैं, मुझे देखे दुनिया। मैं हूँ उर्दू, मुझे लिल्लाह तबाही से बचाओ। पेश खिदमत है हेलमेट। अर्ज़ किया है, साहब मुझे एक अच्छी सी हेलमेट दिलाइए। मैं जानती हूँ आपकी पेंशन बहुत है कम। डीए हमारा है अभी सीएम के फंड में जम। मेकअप का मेरे हो चुका खर्चा बहुत ही कम। है आपकी दवाओं को दरकार कुछ रकम। साहब मुझे एक अच्छी सी हेलमेट दिलाइए। हो रंग आसमानी नवजनी जियाद हो, आईना बाईफोकल हो, वाइपर के साथ हो। नज़ारा आसमान का कुछ ऐसा साफ हो, ता चांद ईद का मेरे पेशे निगाह हो। साहब मुझे एक अच्छी सी हेलमेट दिलाइए। बच्चों को लेके जाती हूँ शॉपिंग को ईद की, रश गाड़ियों का देख के डरता है मेरा जी। बैलेंस बरकरार ना रख कर जो मैं गिरी, आकर किसी भी कार तले मैं जो मर गई। 10-20 मेरे नाम पे हेलमेट बटाइए। जवाब भी सुन लीजिए। बेगम मुझे कबूल है हर बात आपकी, किस्मत में हो कमी ज़रा बतलाओ आप ही। इस हफ्ते ही तो भरनी है बिल टेलीफोन की, आइंदा माह देना है बच्चों की फीस भी। अपने बजट में आप कमी थोड़ी लाइए। अखबार पढ़ने लाइब्रेरी चल के जाता हूँ, महफिल भी दोस्तों की मैं कम कम जमाता हूँ। मखसूस दावतों ही में बस अब तो जाता हूँ, फुटबॉल मैच देखने टीवी लगाता हूँ। कह कह के अपना जी मेरा बेगम जलाइए। साहब मुझे एक अच्छी सी हेलमेट दिलाइए। सामीन एक और हल्की फुल्की नज़म समात फरमाइए हालात हाजिरा पर। अर्ज़ किया है, हमारे शहर के लीडर अजीब हैं कितने, हर एक हादसा 2 दिन में भूल जाते हैं। जो मिलके बैठेंगे हल करने मसाला कोई, नए सिरे से क़ियामत नई मचाते हैं। ये वादा करके गरीबों से जॉब देने का, बिला खुसूर उन्हें जेल में भिजाते हैं। बसाओ इनसे भी सरकारी मेहमान खाने, तो देखें हम भी कि कैसे ये हल चलाते हैं। बजाए बासमती खाएंगे जवार ये, जब हवास खुद ही ठिकाने पे इनके आते हैं। है किससे शिकवा, यहाँ सभी अपने हैं तशहीर। हम अपने फ़िक्र को सहल कराने आते हैं। हमारे शहर के लीडर अजीब हैं कितने, हर एक हादसा 2 दिन में भूल जाते हैं। शुक्रिया, आदाब।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बज़्म नज़्म सिसरे तहत रियाज़ फ़ातिमा तशहीर की पेश करदा नगमे, जो मुख्तलिफ़ उनवानात पर मबनी थी, जैसे हेलमेट और उर्दू। वैसे दोस्तों, हेलमेट का हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं या सफ़र करते हैं, बाइक पर या पिलन राइड पर। इससे होता यह है कि आदमी न सिर्फ हादसे से महफूज रहता है, बल्कि इससे आदमी को नुकसान भी नहीं पहुंचता है जिस्मानी तौर पर।

हवाई दोस्तों सुनते हैं गीत सुरीले गाता जा में कुछ सुरीले गीत। कहते हैं कि किसी की याद आना न सिर्फ एक खुशगवार लम्हा होता है, बल्कि इससे किसी के याद आने से लोग खुशी से सरशार हो जाते हैं और उनके मुताबिक अपनी यादें साझा करते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म राम लखन से। इस फिल्म के गीत को गाया है मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल जी ने। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आइए सुने।

फिल्म रामलखन से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, यादें इंसान की एक खूबसूरत किताब की मानिंद होती है, जो आदमी अपने गुजरे हुए पल को याद करता है और उससे महसूस होता है। जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपना असर छोड़ जाते हैं। असर यानी इन्फ्लुएंस। वैसे इन्फ्लुएंस आजकल हम काफ़ी सुनते भी हैं और सोशल मीडिया में इसका बोलबाला भी होता है, जिसको आमतौर पर इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंस या असर अंगेज़ तकरीर या असर अंगेज़ काम करना किसी की ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बनता है। वैसे दोस्ती से जो असर लोग दूसरों की ज़िंदगी में छोड़ते हैं, वो काफ़ी गहरा रहता है। तो आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म आशिकी से। इस फिल्म के गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल जी और कुमार सानू ने।

फिल्म आशिकी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना और दिल जीत लेना, ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी का पल होता है। वैसे दोस्तों, दिल जीतना एक फ़न है, और कहते हैं कि वो अदाएं दिल बरी वो नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह समाना। जिगर मुरादाबादी का ये शेर आज भी अपनी अंदर एक

कशिश रखता है। आइए सुनते हैं इस पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म बाजीगर से। इस फिल्म के गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने। गीतकार थे नवाब आरजू और संगीत से इसे सजा है अनु मलिक ने। आइए सुनें।

फिल्म बाजीगर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि इंसान की निगाहें अपने अंदर एक पैगाम रखती हैं। जब लोग देखते हैं या उन किसी की नज़र किसी पर पड़ती है तो ये एक तासुर ज़रूर छोड़ जाती है। इंसान की निगाहें या इंसान की नज़र बहुत कुछ कह जाती है और इसी से एक तालमेल भी बनता है और एक मिलान भी हो जाता है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म चमत्कार से। इस फिल्म के गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे निगाहों की और नज़र की। आइए इस पर एक और गीत सुनते हैं, फिल्म बिच्छू से। इस फिल्म के गीत को गाया है हंस राज हंस और श्वेता शेट्टी ने।

फिल्म बिच्छू से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों अक्सर बेशतर देखा जाता है कि लोग जब किसी को देखते हैं तो उसमें

हो जाते हैं, यानी उसकी शख्सियत या उसके रख रखाव या अंदाज़ से ना सिर्फ ये मुतासिर हो जाते हैं बल्कि उसे जाने भी लगते हैं। और आजकल एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ऑरा, जहाँ पर लोग किसी की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होकर उसकी तरफ निगाहें टिका देते हैं बल्कि उसी से अपना ताल्लुक़ बनाने की भी कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म अंजाम से। इस फिल्म के गीत को गाया है अभिजीत ने।

फिल्म अंजाम से दिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि किसी का मिलना ना सिर्फ एक खूबसूरत समा बिखेर देता है बल्कि एक नई शुरुआत भी कर देता है। अक्सर बेशतर जब लोग मिलते हैं तो अपने ख्यालात साझा करते हैं और साथ साथ चाहते हैं कि वो अपनी खुशियाँ बांटें और इन खूबसूरत पल में डूब जाएं। आइए सुनते हैं कैसा है कि जिसको लिया है हमने फिल्म क्रिमिनल से। इस फिल्म के गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने।

फिल्म क्रिमिनल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और जब दिल जिंदा रहता है तो दुनिया खुशगवार लगती है, और इस दुनिया में जिंदा दिली से जीने का जो जज्बा है वो आदमी में रहना चाहिए, चाहे वो अकेला हो या किसी के साथ हो, लेकिन ज़िंदगी खुशगवार होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म रंगीला से। इस फिल्म के गीत को गाया था आशा भोसले जी ने। आइए सुने।

फिल्म रंगीला से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों ज़िंदगी के जज्बे पर हम बात कर रहे थे। यकीनन ज़िंदगी मुख्तलिफ दौर से गुज़रती है, मुश्किल दौर से, खुशगवार दौर से, और ज़िंदगी जीने का एक अपना अंदाज़ होता है, एक अपना जज्बा होता है। और कहते हैं कि चलने का नाम ज़िंदगी है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मस्त से। इस फिल्म के गीत को गाया है सुनिधि चौहान और सोनू निगम ने।

फिल्म कहो ना प्यार है सिटिया गया, ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी का हर पल अपने अंदर एक खूबी रखता है और ज़िंदगी का हर पल लासानी है, इसीलिए ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। अब आइए सुनते हैं दोस्तों गीत सुरीले कथजा में, आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म पुकार से। इस फिल्म के गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति जी और शंकर महादेवन ने। आइए सुने।

0: चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। हर नई चीज़ वाकई बेहतरी नहीं होती। अगर तरक्की के नाम पर नुकसान हो रहा हो तो उसे तरक्की नहीं तबाही कहा जाएगा। नए जमाने की हर बात को बगैर सोचे समझे कबूल करना दानिशमंदी नहीं। हमें हर चीज़ को अकल और बसीरत से परखना चाहिए। वो रोशनी जो घरों को जला दे दरअसल रोशनी नहीं बल्कि आग है। हकीकी रोशनी वो है जो सुकून, भलाई और खैर लाए। जदीदियत के चक्कर में अगर हम अपनी रिवायात, अखलाक और इंसानियत को खो दें तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये भी सच है कि हर चमकती चीज़ रोशनी नहीं होती। असल कामयाबी वही है जो इंसान और माशरे को महफूज और बेहतर बनाए।
1: इसी पैम के साथ दोस्तों आज का नरंग प्रोग्राम अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The bar.

जिंदगी के इतने सारे सवालों में से कुछ के जवाब शायद ना भी मिले, लेकिन आपके मन के हर एक भाव को आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल बखूबी समझता है। इसलिए तो आपकी परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के गीतों का गुलदस्ता आपको इस कार्यक्रम के जरिए पेश करता है, जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। पहला गीत था मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीतकार आरडी बर्मन।

ये गीत आपने सुना फिल्म गुमराह से महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना, रवि ने इसे सुरों में पिरोया। इसे और हमारे अगले गीत को जोड़ती है सैयद सरोश आसिफ की कलम से निकले ये शब्द कि चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, सुबह का भूला शाम को लौट के आया है। तो चलिए, अब जब चांद की बात चली ही है तो सुन लेते हैं फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे से मुकेश की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत सरदार मलिक का।

इस मजेदार गीत के बारे में तो वैसे आप सब जानते ही होंगे, लेकिन चलिए बता ही देते हैं कि मन्ना डे का गाया ये गीत था फिल्म 1968 में आई पड़ोसन से। राजेंद्र कृष्णा का लिखा हुआ, आरडी बर्मन ने दिया इसका संगीत। अब कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में हम आपको जब हर तरह के गाने सुना ही रहे हैं और जब जाने का समय भी होने को आया, तो किशोर कुमार की बात का जवाब दीजिए। फिल्म का नाम दाग, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हमारा भी बस यही मन करता है कि अपने दिल की बात आपको बताते रहें और आपकी बातें सुनते रहें, लेकिन क्या करें, हमारी मुलाकात आज का दिन और तारीख बदलने से ठीक पहले पहुंच चुकी है अपनी मंजिल तक। तो गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम को देना होगा विराम। इसके साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को आज्ञा दीजिए, हम मिलेंगे अगले सोमवार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आगे सुनिए समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय

0: भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं निशिगंधा का। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ, दश्त से दूर भी क्या रंग दिखाता है जुनू, देखना है तो किसी शहर में दाखिल हो जाओ। वो सितमगर तुम्हें तस्खीर किया चाहता है, वो सितमगर तुम्हें तस्खीर किया चाहता है, खाक बन जाओ और उस शख्स को हासिल हो जाओ। मैं हूं मौज ए फना और यहां कोई नहीं, तुम अगर हो जरा राह में हायल हो जाओ, इश्क क्या कार्य हवस भी कोई आसान नहीं, इश्क क्या कार्य हवस भी कोई आसान नहीं, खैर पहले इस काम के काबिल हो जाओ, तुम मसीहा तो नहीं हो कातिल हो जाओ।

खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको। फिर छोड़ दिया रेगिसरे राह समझकर, कुछ दूर तो मौसम की हवा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हीरा,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही खूबसूरत बात आपकी नज़र करते हैं कि रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अलहड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, जिद्दी वहशी चंचल अलहड़ मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हम क्यों उनके दर पर उतरे कितने और ठिकाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे।

दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, अपनी कहां है जैसे उधारी है जिंदगी। आवाज मुझको ना दे ऐ गुजरे वक्त सुन, मुश्किल से हमने अपनी सवारी है जिंदगी। कोई खुशी भी पहलू में आई कभी नहीं, मेरी नजर में अब भी कवारी है जिंदगी। सोचो तो जी रहे हैं तुम्हारे ही वास्ते, जब चाहो मांग लेना तुम्हारी है जिंदगी। दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी। और चलिए अब मंचली फिल्म का गीत सुनते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में।

सुरभि के साथ प्रोग्राम निशिगंधा आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और चलते चलते एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, इस तरह हर हाल में जीने का लुत्फ उठाइए, करते हो इंसानियत की बातें इतनी जो दोस्तों

बेसहारों को जरा गले से तो लगाइए, आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, इस तरह हर हाल में जीने का लुत्फ उठाइए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं।

0: बालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance, NDA government, led by N. Rangaswamy's All India NR Congress, AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
3: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhabanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kollan Laha reporting from Kolkata.
2: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member House, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि आपके बीच। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन उससे पहले बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे, तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या जब हम

सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही बात करेंगे। सुनकर रो पड़ोगे तुम खून के आंसू, जब पेश अपने दिल के जज्बात करेंगे। जो बात दिल में है हम वही बात करेंगे।

और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूबसूरत बात कही है किसी ने कि दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, एक अलग ही अपनी दुनिया हम सजाए बैठे हैं। हम नहीं कहते किसी को हाल दिल अपना, मगर लोग कहते हैं कि हम क्या क्या छुपाए बैठे हैं। मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, खुद ही जब वो गैर को अपना बनाए बैठे हैं, एक अलग ही दुनिया हम सजाए बैठे हैं।

सा कोई दवा न कर। मेरे लिए तो खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। मुश्किल से ये बुझ पाए हैं शोले मेरे दिल के, मुश्किल से ये बुझ पाए हैं शोले मेरे दिल के, जल जाएगा तू देख ले इनको हवा न कर। हर वक्त रहना चाहता हूँ तेरे सामने अदना, अपने ख्याल में तू मुझको बड़ा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। मेरे लिए तो खुद को यूँ खुद से जुदा न कर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मेरे लिए तो खुद को यूं खुद से जुदा न कर, मेरे लिए तो खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। अपनों के दिए जख्म हैं दौलत मेरे लिए, अपनों के दिए जख्म हैं दौलत मेरे लिए, रहने दे इनको ताज़ा।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अपना दीवाना बनाकर ले जाए, अपना दीवाना बनाकर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए, हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए। रंग रुखसार पे इतना इतराओ नहीं, जाने कब वक्त उड़ा कर ले जाए, हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए।

तीर की अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, उसकी फितरत तो हमें आदमी सी लगती है। बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, उसकी सूरत क्यों मुझे अजनबी सी लगती है। तीरगी अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। 2:10 पर रात सुरमई में होगी सुरभि और आपकी मुलाकात एक बार फिर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 37

0: 40 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मानों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on 1 seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodo

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। उससे पहले, अब जाके ज़िंदगी को समझने लगा हूँ मैं, अब जाके ज़िंदगी को समझने लगा हूँ मैं, जब पेच व ख़म में इसके उलझने लगा हूँ मैं, एहसास मेरा आज भी ज़िंदा है देखिए, तुम धूप में जले तो पिघलने लगा हूँ मैं, तेरी वजह से दुनिया में मेरा भी है वजूद, किरदार से ही अपने निखरने लगा हूँ मैं, अब जाके ज़िंदगी को समझने लगा हूँ मैं, जब पेच व ख़म में इसके उलझने

जब किसी की याद आती है और ऐसे में अगर ये चंचल हवा छेड़ दे और उलझे हुए बालों को, चेहरे को सुलझाती हुई, सहलाती हुई और अपने आप में एक हल्की सी खुशी लबों पर आ जाए, तो उस पल में सब कुछ थम जाता है। मन केवल उस स्पर्श को महसूस करता है जिसे शायद पहले भी महसूस किया जा चुका है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्ज़ाम हम भी उस पे कोई लगा देते, उसका अभी बुलावा आता नहीं मगर जीते हैं किस तरह से तुमको बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्ज़ाम हम भी उस पे कोई लगा देते।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है

100.1 पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, अब सुकून की तलाश में कहाँ तक और बेचैन हुआ जाए। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है, अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है, आजकल लोग मुस्कुराने की भी वजह पूछने लगे हैं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल हैं, मैंने एक ख्वाब सा देखा। मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, अगर ना मिले तो समझ जाना हम तुम्हारे थे ही नहीं। 3:24 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, 3:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को 100.1 FM गोल्ड पर।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, ना रहे अगर कोई शिकायत तो समझ लेना अब वो रिश्ता भी नहीं रहा। 3:36 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, क्योंकि गुस्से में सिर्फ शैतान अच्छे लगते हैं, इंसान नहीं। 3:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मैं आज बोलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। रहते हो तुम ना जाने किस गुरूर में, रहते हो तुम ना जाने किस गुरूर में, होकर मगरूर जाने किस फितूर में, मिले जो फुर्सत

तो आओ दो पल बैठे कहीं, मिले जो फुर्सत तो आओ दो पल बैठे कहीं, कब तक भटकते रहोगे यूं ही फिजूल में। 3:53 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

काश किसी दीवाने को। 3:59 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर में ठीक 4 बजे आप सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री करगम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की

0: एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 401 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 108 seats out of 234 constituencies across the state. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats. Indian National Congress has won 5 seats. BJP, DMDK and AMMKMNKZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चेत। करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, जल्दी नहीं है हमें कहीं जाने की। करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, जिन्हें हमेशा ललक रहती है कुछ न कुछ पाने की। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। सुकून से बिता लें कुछ पल, अब वो वक्त ही चला गया। सुकून से बिता लें कुछ पल, अब वो वक्त ही चला गया। मिलने मिलाने का वो दौर

अब गुजरे वक्त में बदल गया, होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ, होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ, लगता है हर कोई वक्त से पहले ही संभल गया। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, जरूरत के हिसाब से बनाए गए रिश्ते अक्सर जरूरत पूरी होने के बाद खत्म हो जाते हैं। 4:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, जमाने के हिसाब से बदलना हमने अभी तक सीखा ही नहीं। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, नादानियां करने की उम्र शायद अब निकल गई। 3:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, अपनी शिकायतें लेकर जाऊं अब किसके पास। शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, तलाश है मुझे ऐसे इंसान की जिसके पास हो समाधान भी कुछ खास। 4:45 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कभी रात दिन हम दूर थे, करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, पर कुछ नरमी भी रखो अपने मिजाज में। अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, हमेशा क्यों रहते हो इतने अहंकार में। 4:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। पीटते हो ढोल सारा दिन अपने काम और काम की व्यस्तताओं का, पीटते हो सारा दिन ढोल अपने काम और अपने काम की व्यस्तताओं का, फिर करते हो गुमान अपने रोजमर्रा के काम का। कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, फिर रोना क्यों रोते हो समय के अभाव का। 5:12 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में क्या मिलिए ऐसे लोगों से। जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, गिरेंगे तो खुद ही उठना पड़ेगा चाहे हो किसी भी हाल में। गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, बस संभालने वाला कोई भी ना होगा जब आप फंसेंगे किसी बवाल में। 5:17 हो चुके हैं। वैसे तो आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर अगर आप चाहें तो YouTube पर भी मुझे RJ अर्चित के नाम से सर्च करके सुन सकते हैं।

घूम घूम कर किताबी ज्ञान मुझे कम ही आता है। लोग डूबे रहते हैं दिन रात किताबों में, मुझे तो अब लोगों के चेहरे पढ़ना भी आता है। 5:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, बड़े से बड़ा अंधेरा भी इसे देखकर भाग जाता है। यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, जीवन में गजब का आत्मविश्वास आता है। 5:30 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।